गुरु रामदास पातशाह की सिफत करदे होए कि समर्थ गुरु ने सिर दे उते हाथ रखिया है। जिस तरह गुरु अंगद साहब ने गुरु नानक साहब की

चौंकी दा पावा टूट गया ते मैं अपना पैर थले दे दिता कि मता आप जी दा ध्यान ना भंग हो जाए ते मेरे पैर दे विचों एक खून निकल रहा है जिद नाल पानी दा रंग लाल हो गया। तो गुरु साहब जी बड़े प्रसन्न हुए, कहन लगे बेटा पानी मंग तेनू की चाहिए। क्या पिता जी आपका दिता बहुत कुछ है, उस अकाल पुरख का दिता बहुत कुछ है, किसी चीज की इच्छा नहीं। महापुरुषां दे तीन वचन हुंदे ने, तीसरी वारी क्या बेटा कुछ मंगो, बड़े प्रसन्न हां। ता पानी जी ने कहा पिता जी जे तुठे हो ता ए वर दियो कि ए घर दी गद्दी घर विच रवे। ता गुरु साहिबां ने कहा ए चीज मिलता जाएगी पर इहदे वास्ते देना बहुत कुछ पवेगा, सारा सरबंस वारना पवेगा। अगर मंजूर है ता ए जोत ए गुरगद्दी घर विच रह सकती। क्या पिता जी जो मर्जी हो जाए मैं सब कुछ कुर्बान कर देंगी, पर ऐसा संगत की सेवा ए साडे परिवार दे कोल रवे। ता उस वक्त गुरु साहिबां ने कहा कि बेटा देख लो ਤੱਤੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਗਰਮ ਰੇਤੇ ਪਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਧਰੇ ਸਿਰ ਵੀ ਕਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਧਰੇ ਬੱਚੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਲਨੀ ਕਰਵਾਉਣੀ।

जे तुहाडा हरमंदर आजाद नहीं, तुहाडा एक घर आजाद नहीं, ते तुहाडे जीण दा भी कोई लाभ नहीं। ओ सिख नहीं जिन्हों ये पता लगे कि साडा हरमंदर कैद है, असी हरमंदर दे दर्शन नहीं कर सकते, ते ओ सिख चुप बैठा रवे, ओ सिख अकवान दे लायक नहीं हैगा। अज प्रण करो कि असी हरमंदर साहब नूं आजाद करके रहना है। एक लेख मारी जकारा छड़िया, सारिया सिखा ने लीक टप्पी, ते बाबा दीप सिंह अपनी जवाना दे नाल तुरे ने अमृतसर दे लागे। बड़ा भयानक युद्ध होया, एक पासे हजारा मुगल फौज, एक पासे गिनती दे सिख, पर सिखा नूं जान प्यारी नहीं, अपना हरमंदर प्यारा है। अपनियां जाना वारियां अते बाबा दीप सिंह दा जदों सिर तों सिर धड़ नालों अलग हो गया, अपना सिर हथ ते चुक के खंडा बांधिया होया, दुश्मना दा नाश कीता ते अपने हरमंदर नूं आजाद कराया। क्यों कि बाबा दीप सिंह जी जानदे ने ये गुरु रामदास दी नगरी, गुरु रामदास ने वसाई है, ते जेड़ा भी इस नगरी ते हमला करेगा ओदा नाश हो जाएगा, ओदी कुल दा नाश हो जाएगा। भावे ओ कुछ चिर तां खुश रहिंदा है कि मैं कब्जा कर लिया, मैं हरमंदर नूं बर्बाद कर दिता, मेरा कोई की बिगाड़ सकदा है, पर इह तां गुरु दी नगरी है, जिथे गुरु रामदास वसदा है, अकाल पुरख वसदा है, जेड़ा इनू बर्बाद करेगा।

मैं ता काची दे मानुख अब मानी इस कच्ची दे हंकार च मता होया गलतियां करता चला जा स्वाद बाद झूठ विच रसा विच ईरख मद माया हंकार विच ईरखा विच माया विच इन संग लाग रसन जन्म गवाया दुख भजन जग जीवन हर राया मेरे वाहिगुरु जी तुसी इन्हां पापां दे दुख दूर करन जोग जिन्हां ने जगत नूं जीवन दिता है वह आत्मक जीवन भी बख सकते सगल त्याग नानक शरणाया मैनू तां इन्ना भी पता नहीं जीवन मिलिया कादे लई कवन काज सिरजे जग भीतर जन्म कवन फल पाया किस काम नूं तूं मैनू सिरजिया किस काम वास्ते मैनू जीवन मिलिया है किहड़े पुन्ना करके जीवन मिल गया जन्म कवन फल पाया पहवने तरन तारन चिंता मर एक निमुख ना ए मन लाया गोविंद हम ऐसे अपराधी मेरे साहब जी असी तां एडे वड्डे गुनाहगार हां जिन प्रभ जियो पिंड था दिया तिसकी भाव भगत नी साधी जिन्हें जिंदगी दिती है ओनू भी कदे चेते ना इन्हें अकिरत कहन कि जिसने जिंदगी स्वास खान पान भोजन पहरान सब कुछ बख्शिया है ओदा ही चेता कोई पर धन केड़े पासे मन लगा है लोकां दे धन वल वेखते हैं लोकां दे सहीदां वल वेखते हैं पर धन पर तन परती निंदा बुराइयां भी लोकां दीआं वेखियां ने अपनियां नजर नहीं आई लोकां दी निंदिया करदे रह गए ते अपनियां नेकियां दीआं फड़ां मारदे रह गए अपनियां बुराइयां वल ध्यान ना कीता पर अपवाद ना छूटे लोकां नाल झगड़े करदे आ रहे आवा कौन होत है खुण खुण यह प्रसंग ना टूटे यही कारण है मेरा मुड़मुड़ के जमना मरना बनिया हो आना जाना ते भटकना बनी हुई है कहानी मुकण च नहीं पी आ जे कर कथा होत हर संतन जिथे ता भगत जन बह के रब की गल करते ने उथे एक निमुख ना कीनो मैं तेरा मन करके तन करके पूरे तौर से मेथो एक पल भी जुड़िया नहीं जा मन करके मेरा उथे फेरा नहीं पै लगता टिकया नहीं जाता मैं लंपट चोर दूत मतवारे काम क्रोध लोभ मोहंकार आदक ते इन्हां दे मारे हुए जिहड़े बुरे लोग ने तिन संग सदा बसेरा उन्हां लोकां दे नाल मेरा वासा नित दा बणिया काम क्रोध माया मद मत्सर ए संपे मो माही जिंदगी विच इकट्ठा मैं की कीता काम इकट्ठा कर ले क्रोध इकट्ठा कर ले माया इकट्ठी कर ले हंकार इकट्ठा कर लिया दया धर्म अर गुर की सेवा ए सुपनंतर नाही ए नेकी दे काम जिहड़े सुपने विच भी नहीं पए आउंदे उंज तां मैं जीवन च की कर लिया नेकी ते भलाई मेरे सुपने विच भी नहीं पई आउंदी साहिब गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने तां साडा शीशा बनाउण लग्गिया कमाल करती साहिब कहिंदे ने चेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे दया करो किछ मेर उपावो डुबदे पत्थर सारे समुंदर सागर जिन्ना कु पानी नाल भरिया ए तो भी बहुते अवगुण ने साडे कदे कदे ध्यान मारदे रहिए बहुत फर्क पै सकदा सह पंचम पातशाह कोल पिशावर की साख काबल की संगत आई सी सूबा सरहद की संगत आई सी एक सिख ने उठ के बेनती की साहब जी गलतियां बड़िया गुनाह बड़े हो जाते साहब कह लगे फिर की होया कह लगे महाराज किवें बख्शे जावांगे साहब कह लगे इस तरह करो जदों अगले साल आओगे ना पूरे साल का हिसाब करके लिया है जिहड़ी गलती ते गुनाह होए उहदा भी हिसाब कर लेना लिखी जाना नाल उहदा जिहड़ा पुन कर्म करो चंगा कर्म करो वह भी लिखी जाना चले गए साल बाद आ गए महाराज ने पुछिया याद कराया क्यों भाई गुरमुखो तुसा एक सवाल किया सी ते असां तुहानूं कहा सी कि अपनियां वहियां बनाओ खाते बनाओ बाप दे ते पुन दे तुसी खाते बनाओ खाते बनाए ने कि महाराज बनाए ते सन लियाओ फिर विखाओ कि महाराज लियांदे कोई नहीं क्यों नहीं लियांदे कि महाराज लिखिया ही कुछ नहीं सी होया कमाल है भाई तुहानूं लिखण नूं कहा सी तुसा वहियां ते खाते बनाए लिखिया क्यों नहीं कि महाराज गल यह है कि जिसने गुनाह किया लिखन लगे तो सोचा भी उथे महाराज की हजूरी च संगत च पढ़ के सुना पेगा नंगे हो जा शर्म आ गई लिखन तो शर्म आ गई नहीं लिखिया महाराज कह लगे फिर पुन कर्म भी कोई नहीं किया पाप कर्म तो लिखन लगिया शर्म आ गई कि महाराज मेरी शर्म नहीं आई पढ़ के फिर करन लगिया भी शर्म आ गई कि जे तो करांगे तो लिखने पैणगे महाराज का हुक्म है जे लिखांगे तो सुनाने पैणगे नंगे हो जा इस करके पाप कर्मा तो बचते ही चले गए हुए ही नहीं तकरीबन बचे ही रहे हैं साल पर
महाराज कहने लगे जे पाप कर्म नहीं किए फिर पुन कर्म का की हाल रहा कि महाराज वह कुछ कुछ होए जरूर ने पर लिखन लगिया शर्म आई जे लिखे कदे कदे एक अद्धा तो मसा हुंदा सी ते जे कहीए भी लिखिए ते आखिए नाले तो हंकार होगा ते नाले की गिनती देंगे महीने च एक पुन कर्म होया सी कि महीने च दो होए सन शर्म दे मारे हैं महाराज क्योंकि पुन कर्म बड़े थोड़े सन वह नहीं लिखे गए ते पाप कर्मा तो तुहाडे लिखण दे काम ने बचा लिया कि जे लिखांगे ते नंगे होवांगे इस करके ना करिए ते ना लिखिए बिल्कुल जिसले बंदा आत्म सर्वेखण वल लग जाए ना अपने आप वल वेखण लग जाए अपने आप नू भोखण लग जाए उदों पापां तो बच जाए इस करके साहिब दे दर दे उत्ते हथ बन के खड़ा अपराधी होके खड़ा सच्चे पातशाह कृपा कर लो मेरे कोलो तां कंचन नारी मैं जियो लुभत है मोह मीठा माया कर मंदर कोड़े खुशी मन अंदस लाया हर कम चेतना आवई जो छूटा मेरे हर राया मेरे राम ए नीच कर्म हर मेरे गुणवंता हर हर दयाल कर कृपा बख्श अवगुण सा मेरे तू कृपा करके बख्श ले मैं ता अवगुणी गुनाकार पापी हां जिवे जानना है हो अपराधी गुनाकार हो बेमुख मंदा भाई गुरदास के कथन अनुसार ए अरदास लेके बह जाइए कुछ पाप करने तो बच सकांगे कुछ पुन करने वाल प्रेरे जा सकांगे कदे अपने आप दे गुरबाणी अनुसार गुरबाणी दी किस्मती नाल अपने आप दे चाती मार लिया करिए वेख लिया करिए किथे कोई बैठे हां की हाल है किवें बख्शे जावांगे बख्शे जाण वास्ते अरदास बहुत वड्डा साधन है सिख दे कोल ते अरदास करन वास्ते

ताती भावना लग गई, पार ब्रह्म शरणाई। नो हार्म कम्स टू देम हु आर अंडर वाहिगुरुज प्रोटेक्शन। ऑन ऑल फोर साइड्स इज माई लॉर्ड्स प्रोटेक्शन। आई हैव मेट द परफेक्ट लॉर्ड हु इज द क्रिएटर। He has gifted me with the balm of Lord's name, and I have enshrined love for Him within myself. The Preserver has protected me and cured me of all my ailments. The Lord has taken me under His wings and has become my protector.

रूप और सोने चरणा का ध्यान करके ये पंक्तियां बोलो, फिर की होएगा? बाबे ने जिथे ये सोने पैर धरे वो स्थान पूजा के थापे गए, साडे भी हिरदे विच जे ये चरण वस गए से साडा भी हिरदा पूजा लई उस योग बन गया।

परता देख बिगसे ज्यो नारी त्यों हर जन जीवे नाम चितारी। सारे गज के आखो सतनाम हो जा प्यार पूत देख बिगसे ज्यो माता ओत पोत जन हर स्यो राता। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਤੇ ਤਰੋ ਧਿਆਨ ਚਾਹਵਾਂਗਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ।

0: हरे अखो
1: सतना
2: बाबा पैर जिस धरती के चरण पाए उस स्थान से पूजा अकाल पुरख भी शुरू हो गई। जे किसे प्यार वाले दे हिरदे दे विच चरण पाए उस हिरदे विचों भी अकाल पुरख की पूजा शुरू हो गई। जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापन सोआ। मान करो जिस दयालता दी जिस कृपा दे उत्ते गुरु नानक दी सोई पहुंची है किसे दी नहीं पहुंची। बाबा जी वचन कर गए सी गुरु नानक साहब जी दे दुनिया नूं तारां दे विच चार विशेष गुण सन। चार विशेष गुण की सब तो पहला विशेष गुण के अज तक किते मिसाल नहीं के अवतार पापी दे घर चल के गया होवे आ वी झोली पर दात लै लै। आखो सतनाम। दूसरी विशेष गल जिन्हों भी तारिया बाणी का तीर मार के सत संगत। तीजी विशेष गल जिन्हों भी तारिया उदा पिछला लेखा नहीं पुछया भज के आखो सतनाम। नहीं तो लेखा दे आया ना। पर तुहाडे सामने मिसाल है कि सजन ठग दा पिछला खाता किथे गया जज के आखो सतनाम। मान करो ये गुरु नानक। दीपालपुर कौड़ी दा पिछला लेखा किथे गया कौडे राक्षस दा भूमि चौर दा बली कंधारी दा। सतगुर गुणी निदान है गुण कर बख्शे अवगुण आरे। किते ते सजा दे के औगुण नूं बख्शिया जांदा है किते गुण कोलों दे के औगुण लै के इंज औगुण बख्शे जांदे। ए तीजी विशेषता पिछला लेखा नहीं पुछिया पिछला साल नहीं पुछिया गुरु प्यारे। हुण इक चौथी गल सुनो फिर होर प्यार आ जांदा है। गुरु नानक दे चार तारण विच चौथी विशेषता कि जिदे ते नजर कीती है उनू केवल तारिया नहीं उदी इन्नी कि बैटरी चार्ज करती कि अगों कईयां नू तारन वाला बना दिता है। गज के आखो सतनाम। बड़ी वड्डी गल है। इक ते इनू तार दिता उनू अगों जोगा बना कोई ले ले सज्जन ठग नूं लाके दा थापता लै हुण तूं देख उहदा केवल उहनूं नहीं अगों तारण योग बण। सालस राय गौरी नूं निरी उहदी अख नहीं खोली नाल मंजी दे दित्ती। आ इन्ने साल तेरी उमरी तेरे बादों तेरा नौकर बैठेगा अधरका। ओ फिर इस सारे इलाके नूं निरंकार दे घर चो दातां लै के गज के आखो सतनाम। ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹੀਏ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹੀਏ।

नामदान स्नान दड़ाए नामदान स्नान दड़ाए मिठा बोलण मिठा बोलण निवचलण हथों देके भला मनाए हथों देके भला मनाए थोड़ा सवना खावना

मत्से रंगड़ तक पहुंचन दी स्कीम कर ली। एक प्राणी थे तो ठीकरियां इकट्ठियां कर एक बोरी विच भर लिया। अपने केस पिछे नू सुट चौधरी जट्टां वाला भेस बना लिया। तलवारां चोलियां दे हेठ लुका लिया ते हरमंदर साहिब वल नू तुर पए। दोनों शेर दर्शनी ड्योड़ी जा पुजे। बूहे दे सज्जे हथ लगदी बेरी नाल सिंघां ने घोड़े बन ले। भाई सुखा सिंह ने बोरी नू मोढ़िया दे चुक लिया। पहरेदारा ने सोचिया कि किसे पिंड दे नंबरदार मामला उतारन वास्ते आए होणगे, सो किसे ने भी उहनां नू रोकिया नहीं। भादों दी दुपहर होण करके उस वक्त जोर दी नेरी वग रही सी। सिंघां ने अंदर लंघ मन ही मन अरदासा कीता, हे सच्चे पातशाह तेरे सिंघां दा वार खाली ना जावे। की वेखदे हन कि हंकारी मस्सा पलंग ते बैठा हुक्का पी रहा है, कंजरी नचदी पई है। सुखा सिंह ने अंदर लंघदे ही बोरी नू पलंग दे थले सुट दिता। जो ही मस्से ने बोरी नू वेखण वास्ते अपना सिर हेठा चुकाया ता भाई महताब सिंह ने तलवार दे इको वार नाल ही मस्से रंगड़ दा सिर वगा के हे

नहीं, क्योंकि संत के संग नहीं किसी घाल, जदों साध के संग नहीं किसी काल, दर्शन पेटत होत निहाल। महापुरखां दे सत संगत दे दर्शन करके भी पापां दी मैल कटी जांदी है, मन जुड़ जांदा है गुरु दे चरणां विच। जिस तरह आख्या तिना देख मन चाओ उठंदा, जुड़िया होया दे दर्शन करके मन अपना भी गुरु चरणां विच जुड़ जांदा है। इसलिए हजूर बख्शिश कर रहे हैं भाई, साध कै संग नहीं किसी काल, तेनू बहुतियां कालना नहीं कालनिया पैणगियां, संगत दे दर्शन करके भी तू निहाल हो जाएगा। दर्शन पेटत होत निहाल। साध कै संग कलूकत हरै, साध कै संग नरक पर हरै, साध कै संग इया उआ सुहेला, साध संग बिछरत हर मेल। ए लोक भी सुखी हुंदा है ते परलोक भी सुहेला हो जांदा है। असी निरंकार दे चरणां तो बिछड़े होए हां, ते जपन वालियां दी संगत जदों मिल जावे तां साडा मन जुड़ जांदा है। भाव विछड़िया होया गुरु दे चरणां नूं मिल पैंदा है। सात संगत बोलो श्री, ते फिर जो इच्छा है सोई फल पावे। जिसने भी फिर भाई निरंकार दी सच्ची दरगाह विचों मंगया है, फिर उसकी भावना पूरी हुई है। वो कदे इस दर तो खाली नहीं मुरिया। अनेकां मिसालां हन, कोट अपराधी संत संग उधरे, करोड़ां अपराधियां दा उधार हो गया सत संगत विच आके। ते फिर जेड़ी वस्तु किसे ने मंगी, ओ दात ही नहीं मिली, दातां एडियां मिल गईयां के सबे थोक प्राप्ते। थोक दाता मिल गईयां, अगों वंडन वाले बन गए। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। इसलिए हजूर बख्शिश कर दे।

परलोक सुहेले नानक हर प्रभु आपे मेले। जे लोक परलोक सुवारना चाहुंदा है भाई, जिन्हां ने भी सुवारिया उन्हां नूं सत संग

सतगुरु दा कर्म की है। सतगुरु अपने सिख नू परमेश्वर दे नाम दे नाल जोड़दा है, परमेश्वर दा नाम हिरदे दे विच दृढ़ करवांदा है और गुरसिख नू सच्चे सुख दी प्राप्ति करवा दिंदा है। ए सुख जो नाम दे राही प्राप्त हुंदा है गुरसिख नू साध संगत दे विच्चों प्राप्त हुंदा है और इस दी प्राप्ति तो बाद जितने भी दुख हन कलेश हन इना सारिया दी निवृत्ति हो जांदी है, सारे ही संसे दूर हो जांदे हन ते सुखां दी प्राप्ति हो जांदी है। साहिबां दा फरमान है, गुण निधान हर नामा जप पूर

गुरु दी जय जयकार करदा है। इस जय जयकार दे पिछे इको ही गल है जो राज दी है, क्योंकि गुरु तो बिना होर कोई ऐसा नहीं जो प्राणी मात्र लई मुकत दा द्वार खोल सके। नौ दरवाजे दसवां द्वार, बुजरे ज्ञानी एहो विचार, एहो ही ब्रह्म दी विचार है। और जेड़ी विचार गुरु तो बिना होर कोई दे नहीं सकदा। साई फरमान करदे हन, गुर कीनो मुक्त द्वारा सब सृष्ट करे जयकारा, क्योंकि दुनिया विच कोई किसे दी एक दिन दो दिन महीना जा साला बदी मदद कर सकदा है, मगर परमात्मा जो है ओ गुरु राही इस संसार दे विच आके सारे संसार नु फिर परमेश्वर दे नाल जोड़दा है। साई फरमान करदे हन, क्योंकि गुरु ही है जेड़ा दोबारा इस मनुख नु परमात्मा दे घर तक पहुंचा सकदा है। और ऐसे दा ही साथ सच्चा है, जो सच्चे गुरु दा साथ करदा है ओ ही सच्चे परमात्मा नु पा सकदा है। साहिबां दा फरमान।